एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुनरा शिशका काटा सीसा श्री अस्कित जगत के ईसा पोहपन भ्रष्ट गगन ते।

है, चुन चुन सत्र हमारी मारिय है। आम हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करिय रक्षा। राख ले हो मोहि रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद

सुख पाए साधु के सुखी, एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै, जाबूद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तार।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुभ्राता, किलबिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जब पाए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई, अड़िल सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकटन तिन नर की रहै,

अमाव गुण परे एक गुण नाही, अमृत चरण बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पुल्ले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयों गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो सरनाई। सो कहो तल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसमदी, नूर अर सौह गुर सौह चटिए, तुद डिठे सच्चे पात साह, मल जन्म जन्म दी कटिए, सज्जन सच्चा पात साह, सिर साहां दे साहो, जिस पास बहिठे आंसु ही है, सब नादा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

0: नमो चर्वमाने समस्ति निधाने
1: नमस्त्वं निनाथे नमस्त्वं प्रमाते
0: नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं गपंजे
1: नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले
0: नमो चर्वदेशे नमो चर्वपेशे
1: नमो राजराजे नमो साजसाजे
0: नमो शाशाहे नमो महामाहे
1: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
0: नमो रोग रोगे नमो शोक शोके
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
0: नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं
1: नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं
0: नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्र
1: नमो
0: सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे
1: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे
0: अखिजे अपिजे समस्तं प्रसीदे
1: पालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासि
0: सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी
1: चर्पणचंत्र प्रसाद अमृत कर में अमृत तन में
0: अखल योगे अचल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे
0: अखल धर्म अलख कर्मं
1: सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वं पाने सर्वं माने
1: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
0: सर्वं भूता सर्वं जूता
1: सर्वं देवं सर्वं पेवं
0: सर्वं काले सर्वं पाले
1: रुआल चंद्र प्रसाद आद रूप नाद मूर्त जोन पुरख पार
0: सर्वान त्रिमान देव पेवान उदार
1: सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकार
0: जतर ततर विराजे अवतूत रूप प्रसाद
1: नाम धाम न जा जाकर रूप रंग न रे
0: आद पुरख उदार मूर्त जोन।

0: संकीर्ण रूप अनेक
1: खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक रूप रंग ना जात पाछ जानिए के देव
0: आत्मा ना जात जाकर जन्म मरण में
1: चक

आजान बाहु शहान शाहु देवान देव कुमा महान रंकार रंकालान काल गत में तपार गुन गन उदार अद्भुत प्रचंड गत

0: प्रशांत वह प्रसाद कथते के आच जदे से के आप जपे से
1: के आतंज करमे के आतंज परमे
0: के आप जलोके के आदित सोके
1: के अभूत बरने के प्रभूत करने
0: के राजं प्रभा है के तर्मं तुजा है
1: के अशोक बरने के सर

0: के ग्रहण है,
1: मन मान्या है जग जाना है,
0: सर्वंग भर है सर्वंग कर,
1: सर्वासा है सर्वनाशा है,
0: नाकर है विश्वंबर,
1: सर्वेश्वर है नित्येश्वर है,
0: खंडस है कल खंडस है,
1: पाटे पर है पुण्यातर है,
0: जपा जपा थपा थपा,
1: अत्यातिकय अमृतामृत है,
0: अमृतामृत है करणाकृत,
1: अत्यातिकय अमृतामृत है,
0: अदितेश्वर है परमेश्वर,
1: अत्यातिकय अमृतामृत है,
0: अमृतामृत है, अमृतामृत है,
1: नायक है कल का आयक है,
0: संबर है करणालय है,
1: निपनायक है सर्वायक है,
0: भंजन है अर्गंजन,
1: वृत्तापन है जब जापन है,
0: अलोकृत है सर्वाकृत,
1: कर्ता कर है हर्ता हर है,
0: परमात्म है सर्वात्म है,
1: आत्म भाष है जस के जस है,
0: चंद्रया चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र,
1: नमो राज राज नमो इंद्र इंद्र,
0: नमो अंधकार नमो तेज तेज,
1: नमो विद्र विद्र नमो वीर वीर,
0: नमो राज संताम संसात रूपे,
1: नमो परम तत्न तत्न स्वरूपे,
0: नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञान,
1: नमो मंत्र मंत्र नमो ज्ञान ज्ञान,
0: नमो युद्ध युद्ध नमो ज्ञान ज्ञान,
1: नमो भोज भोज नमो पान पान,
0: नमो कला कर्ता नमो शांत रूप,
1: नमो इंद्र इंद्र अनादंत भूत,
0: अलंकार रूपे अलंकार अलंकार,
1: नमो आस आस नमो पाक पाक,
0: स्वरूपे अनंगी अनाम
1: त्रिभंगी त्रिकाल।

0: अनाथ परमाते अजो नियमोनि
1: रागे न रंगे न रूपे न रेके
0: कर्म अकर्म अगंजे अलेखे
1: चंद मस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे
0: अगंजुला नामे समस्तुल निवासे
1: कामं विभूते समस्तुल स्वरूपे
0: कुकर्म प्रणासि सुकर्म प्रभूते
1: सच्चिदानंद सत्रं प्रणासि
0: करिमं कोनिता समस्तुल निवासी
1: अजाय विभूते गजाय अवगनि
0: हरियं करियं करिमु रहिमे
1: चक्रवर्ती चत चक्रभुक्ते
0: सर्वं शुभं सर्वदा सर्वयुक्ते।

0: महादेव को कह सदा सुनकार का जीनत नहीं पे
1: आप अपनी बुझा जेती बन्नत पेन पेन तो देती
0: तुम्हारा लखा न

0: कौशमत पर शंकर ज्ञाता
1: सगरी से सिखाए अजम आज बात रूप से अब
0: अगर चामे ही तुम करो सिख बार सिख संगरो
1: रुच जीते उठवत उत्पाता सकल मलेज करो रंकाता
0: सुन सन्नी परे तिनके दुस दुख थमरे
1: पुरक जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे
0: जो कि कोई बात है ताके काल कटने है
1: रचा होए ताहे सब काला दुष्ट हरेश चरे तितकाला
0: उपदेश तिन दाने हरे हो ताके ताप तरत पहरे हो
1: रित सिद्ध कर मो सब होई दुष्ट चाच है सके न कोई।

0: देवा कहीं पर माता कंत को राव पुरन से भ्राता
1: सकल देह को हरता दुष्टों खेन को छय करता
0: जो पै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काल
1: मन वाचन फल।

0: ठा तिन अमृत गुर ते पाया।
1: भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता केरी विखम मार्ग चलना।
0: लाभ लोभ अहंकार तज तिसना बोत नाही बोलना।
1: कन्यो दिखी वालो निकी एत मार्ग जाना।
0: गुर प्रसादी जिनी आप तजार वासना समाणी।
1: कह नानक चाल भक्ता जुगो जुग निराली।
0: जो तू चलाए तिव चले स्वामी होर।

0: ताकि उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विसारिय,
1: मनो क्यों विसारिय, हे वरदाता जे अगन में आहार पहुंचावे।
0: उसनु कुह कोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे,
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए।
0: कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिय,
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया।
0: माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया,
1: परवार पला पाया।
0: छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया,
1: ए माया जिधर विसरे मो उपजे पौत उजालाया।
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिवला की तिन्नी विचे माया पाया।
1: हर आप मुल्क है मूल न पाया जाए,
0: मूल न पाया जाए किसे विटो रहे लोक विलाए।
1: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनु सिर सौंपिए विचो आप जाए।
0: जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।
1: हर आप मुल्क है पाक तिला के नानक जिन हर पल्ले पाए।
2: हर रास मेरी मन वण जारा, हर रास मेरी मन वण जारा, सतगुर ते रास जानी।
1: हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी,
2: एहो तन तिन्ना मिलया जिन हर आपे पाणा।
1: कहे नानक हर रास मेरी मन हो आवन जारा,
2: ए रसना तू अनरस राच रही तेरी।

0: नेत्र अंध से सतगुर मिलया दिव दृष्ट होई।
1: ए सुनो मेरे ओ साचे सुनने नो पठाए,
0: साचा सुनना नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी।
1: जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस समाणी।
0: सच अलख विडाणी ताकि गत कही न जाए,
1: कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचे सुनने नो पठाए।
0: हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया,
1: बजाया वाजा पवन नो द्वारे प्रगट किए।

0: फते। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तब प्रसाद सोये दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे
1: पाच पशु नाग नाग नरातन सर्व समय सब को प्रतपाल है
0: मोकत है जल में थल में पल में कल के नहीं।

0: सके पद्मा पद भेद कतेब अपेद उचारे
1: रोजी राज ब्रोक दार क्रोक दार की रोजी नाटा रे
0: कीट पतंग कुरंग पुजंगम पूत पविक पवान बनाए
1: देव देव कपे हम एव न भेव लख्यो ब्रह्म से हम परमाए
0: भेद पुराण कतेब कुरान हसेब तके कर हाथ ना आए
1: पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पासो के श्री पद्मा पद पाए
0: आद अनंत अगाध अद्रैक सो पूत पविक पवान अबे है
1: अंत विहीन अनाथ महाप
0: लोगन लोगन के करता हरता जल में थल में पड़ता प्रभ है
1: दीन दयाल दया कर शिफा सुंदर श्री पद्मापदे है
0: काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न पोग न पै है
1: देव हीर सरे सबोतन ने भ्रक्त गय है
0: जान को देत अजान को देत समीन को देत सम्मान को दे है
1: काहे को ढोलता है तुम्हारी सुंदर श्री पद्मापद ले है
0: रोगन ते हर सोगन ते जल जोगन ते बहुपात बचावे
1: सत्रह ने एक जलाव का उतर एक न लागन पावे
0: राकत है अपनों कर दे कर पाप सबूत न पेटन पावे
1: और की बार कहा कह तो सौ सौ पेट ही के पट बीच बचावे
0: जच पचंग सो दानव देव अपेव तुम्हें सब ही कर त्यावे
1: भूम काज पताल सत्र जश पियंग सवे सिर न आवे
0: पाए सके नहीं पार प्रभाहु के नेत ही नेत नेते बेत बतावे
1: बोझ के सभी कुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे
0: नारद से चतुरारन से रुमना रिक से प्रभु मिल गयो
1: देख ते ना पेड़ लगे सब हार परे हर हाथ न आयो
0: पाए सके नहीं पार
1: सनातन त्यायो
2: ध्यान तो रोता है को मन में जह को मित हो सब जगशायो
1: वेद पुराण कतेब कुरान अपेद पान सब पच हारे
0: वेद न पाए सके अनपेद को खेद दया निषेध पुकारे
1: राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग त्यारे
0: आद नाद गाद बेख दुबैख जप्यो ते नहीं

0: ओंकार सतगुर प्रसाद तप प्रसाद चौपाई पंडवो आदि ओंकारा जल थल मैयल की उपसारा
1: हार प्रकाप गते अविनाशी लोक चतुर्दश ज्योत प्रकाशी
0: हास कीट के बीच समाना राव रंग जय सिर जाना
1: अदब अलख प्रकाप गामी साहब घट घट के अंतर जानी
0: रंग रूप छे अनपेखा राग रंग जय रूप नरेखा
1: हर चैन सब उते निहारा।

0: लेखा छोड़े लेखे छुटे हम निर्गुण ले उवारी
1: सतगुर सिंध सदा मेहरबाना सबना दे अदारी
2: नानक दास।

नारायण घट घट प्रगास, नारायण कहते नरक न जाहे, नारायण सेव सगल फल पाहे।